0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
1: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदली सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय पूर्वाहरी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष मुक्ति को सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष का संपर्क राख अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कक्षी को प्रलोभन नगरी आत्म सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कने गुनासो आईना अधिकार कार्यालय प्रमुख जिला संपर्क
2: प्रदेश सरकार आंचलिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम
0: चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: मैं मेरे तो हाथ खुट्टा अरुणा सा झुमझुम करीमास ने हंगाम बनाए यूरोप हो के खी एक बार को जिंदगी दुख दुख में बिताने पर्ने उपचार कता कराने हो
1: दीदी मैं गैस्ट्रिक भर तनाव थाके हिरान भिंदा रुना दिन रात भर जागरण जस्त बस् तर यह सब रोगों को उपचार आमजी औषधालय में हम अरे भर उपचार कराने भाग आमजी औषधालय तीर हिड़क नीदी और संगे जाऊ
2: यहाँ नसा च्यापिएको हड्डी खिएको हात खुट्टा झमझमाउने पुरानो बाछो दम खोकी ग्यास्ट्राइटिस ब्लड प्रेसर अल्सर हर्निया पाइल्स फिस्टुला पिनास कोलेस्ट्रोल टन्सिल मृगौला पित्तको पत्थरी पिसाब परीक्षण छाला सम्बन्धी समस्या योनि चिलाउने निन्द्रा नलाग्ने शरीर पोल्ने महिनावारी गडबडी लगायत सबै

नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदालत व गृह महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष

0: गोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: संचय सूर्य फिल्म स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुर्कुम नगर पालिका 5 सोलुखुम्बु
3: मौसम संबंधी सही सूचना प्राप्त गराऊ सुरक्षित भविष्य निर्माण गराऊ मौसम तथा जलवायु संबंधी सूचना लिनेर दिने गराऊ मौसम पूर्वानुमान को जानकारी नियमित रूप में लिने गराऊ प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सचेत बनाऊ जलवायु परिवर्तन का असर घटाउन सामूहिक प्रयास गराऊ वन संरक्षण वृक्षारोपण में सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जा

0: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौंमा पारस, फिस्टुला, फिसेल लगायतका रोगहरूको दैनिक विशेषज्ञद्वारा परीक्षण, परामर्श तथा शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध भइरहेको छ।
1: विशेषज्ञ सेवाहरू, निशुल्क शल्यक्रिया सेवा, अनुभवी आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सकद्वारा उपचार, छाड़ सूत्र लगायत आधुनिक तथा आयुर्वेदिक उपचार पद्धति को सुविधा, दैनिक ओपीडी तथा शल्यक्रिया सेवा,
0: रोग लुकाएर नराखौं, समयमै परीक्षण गरौं।
1: थप जानकारी का लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौं, फोन 01-4110-6690, 4110-6690।
2: स्वस्थ जीवन का लागि आयुर्वेद अपनाओ।

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संक्षेप सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: न्यू
3: स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुंडा नगर पालिका

0: अन्ठानब्बे बाहन्न पचासी बाह्र छब्बीस र काउन्टर शून्य अडतिस बाहन्न शून्य चार शून्य तीन।
1: समय नै महत्व गरेर उचाल भविष्य निर्माण गरौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित सन्देश।

0: World Class Entertainment को IPTV सेवा प्रदान करने डिश होम इंटरनेट नेपाल को एक मात्रा नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई 6 प्रगति भाई को वाईफाई 6 लगभग उत्कृष्ट जुड़ान प्रदान करने डिश होम इंटरनेट साथ ही इंटरनेट टीवी व अन्य सेवा सजिले व्यवस्थित करने एटा उपयोगी सेल्फ केयर ऐप माई डिश होम ऐप
1: Nelson Simlin, it's me, and I work for Nelson, worldwide franchise, MBS in Michigan, and I'm here to tell you what I have to offer, like truck passenger, tires, they're awesome, super, wonderful, excellent, amazing, number one rule, though we're all about safety, when I go in transit, I'm safe there.

0: टीवी, साउंड सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप, हाउस वायरिंग का सामान चार्सवाड़ा टॉर्च लाइट तथा इलेक्ट्रोनिक सामान होलसेल मूल्य में पाइन सत्यांग में पड़े जले संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान मरम्मत कर
1: साथ ही डीफ्रिज फ्रिज एसी पाने का साथ ही मरम्मत
0: प्रोपाइटर अजय पंचियार संपर्क नंबर 9899094 र 9863684 वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एंड सर्विस सेंटर सोलू दुपकुंड नगर पालिक पास कलरी सोलुकुंगू
1: राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक देखि 30 मीटर भित्र बचाउ र बचाउ यौचन्य हिंसा सामाजिक अपराध हो बाल बालिका यौचन्य हिंसाको दुखीमा हुन सक्छन् हिंसा समिति आफन्तको साथीले परिचित नदिबाट प्रस्तुतिबाट हुन सक्छ अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौं बाल बालिकाको चालचलन पानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आएको हुन सक्छ त्यस्तो पाइने उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौं बाल बालिकासँग नियमित सम्पाद फोन गरौं
2: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भर पर्दो
3: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
3: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुंगा र खोटाङको डिक्टन बजारबाटै फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाउनुका साथै सर्भिसिङ सेवा
3: एक्सपेन्स गो सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइनबाट बुकिङ गरी भुक्तान गरेमा होम डेलिभरीको सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुंगाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दूध को नगर पालिका 5 सोलू कुम्बू

next generation Wi-Fi 6 प्रगति भाई को Wi-Fi 6 नंबर हम संभाल उत्कृष्ट जीवन प्रदान करने डिश होम इंटरनेट साथ ही इंटरनेट टीवी व अन्य सेवाएं सजीले दुरुस्त करने एक आप उपयोगी सेल्फ केयर ऐप माय डिश

बसंत को माया लुहावा चलता, सोला पुत्र को उमेरना जोबन को नहर चलता, कसे कसे ने ती तो मीठो याद रहता देखे होना है ना। हाँ ती याद रू